0: juga dengarkan gosip-gosip panas dan perkembangan industri filem Hollywood dan Bollywood.
1: Mom, take a chill pill.
2: इंग्लिश में बोल देंगे लेकिन अब हम फिलहाल जितना भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इन्होंने मुझसे हिंदी में पूछा है
0: जॉब दिनांक कोली बोली setiap Sabtu pukul 9.30 menit malam hanya di Zone Inspirasi Pahang FM Koli Boli
3: Ya Boss
4: Got the man with the pen right here bringing swag with the man right here living up on sipping on beer yeah clap for me
5: Radio Malaysia Pahang FM
6: sedang bersantai-santai duduk bersama keluarga ke tu jom dengar Pahang FM ceria pagi
7: Radio Miss